नमस्कार एडलेड, मैं हूँ आपकी प्यारी रेडियो जॉकी निकिता और आप सुन रहे हैं 5 VBI 103.1 पर आकाशवाणी एडलेड। स्वागत है आपका आपकी मनपसंद प्रोग्राम यादों की बारात में, जहाँ हिंदी सिनेमा के सुंदर गीत यादों के सफर में पिरोए जाते हैं। आज का हमारा खास एपिसोड समर्पित है हिंदी और बंगाली सिनेमा की एक बेहद ही खूबसूरत, प्रतिभाशाली और शालीन अभिनेत्री शर्मिला टैगोर जी के नाम। 8 दिसंबर 1944 को हैदराबाद में जन्मी शर्मिला टैगोर जी सिर्फ 14 साल की ही उम्र में महान फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे के बंगाली फिल्म आपुर संसार से अपनी करियर की शुरुआत करती है। हिंदी फिल्मों में उनकी पहली सुपरहिट फिल्म रही कश्मीर की कली, जो कि 1964 में आई। उसके बाद उन्होंने रोमांस, ड्रामा और पैरेलल सिनेमा से अपनी अलग पहचान बनाई। 1968 में उन्होंने भारत की मशहूर क्रिकेटर और नवाब ऑफ पटौड़ी मंसूर अली खान पटौड़ी से शादी की। उनके बच्चे सैफ अली खान, सोआ अली खान और सबा अली खान हैं। शर्मिला जी को फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला आराधना के लिए और नेशनल फिल्म अवार्ड मिला मासूम के लिए। उनकी अदा, मुस्कान, आंखों की गहराई बस सबको भा जाती है। किसी ने खूब कहा है, वो हुस्न भी क्या हुस्न था जो दिल में उतर गया, वो हुस्न भी क्या हुस्न था जो दिल में उतर गया, एक मुस्कान से लाखों का सफर तय हो गया। शर्मिला जी की अदाएं भी कुछ ऐसी थी जो देखते गए बस उनके दीवाने बन गए। अब बारी है दीवाना हुआ बादल। फिल्म कश्मीर की कली 1964 में आई थी, उसमें भी कई गीत और शर्मिला टैगोर के साथ नजर आए हैं शमी कपूर। ओनली ऑन 5 VBI आपकी प्यारी रेडियो जॉकी निकिता के साथ।

चलिए दोस्तों, आप सुन रहे हैं 5 VBI 103.1 पर आकाशवाणी एडिलेड, और यादों की बारात में हम बात कर रहे हैं शर्मिला टैगोर जी की। इतना खूबसूरत गाना अभी अभी आपने सुना, कश्मीर की वादियों में फिल्माया गया ये गाना, आज भी रोमांटिक सॉन्ग की लिस्ट में सबसे ऊपर माना जाता है। शमी कपूर और शर्मिला टैगोर की केमिस्ट्री ने इस फिल्म को अमर बना दिया। कहते हैं कश्मीर की कली ने शर्मिला जी को रातों रात हिंदी सिनेमा की टॉप हीरोइन में ला खड़ा कर दिया। फूलों की महक हो या हवाओं का सफर, फूलों की महक हो या हवाओं का सफर, यादों का रिश्ता होता है बहुत गहरा मगर, यादों का रिश्ता होता है बहुत गहरा मगर, कुछ चेहरे वक्त के साथ धुंधले नहीं पड़ते, कुछ चेहरे वक्त के साथ धुंधले नहीं पड़ते, शर्मिला जी उन्हीं सितारों में एक है। चलिए सुनते हैं मेरे सपनों की रानी। मूवी आराधना 1969 में आई थी और शर्मिला जी के साथ नजर आए थे राजेश खन्ना, ओनली ऑन 5 ABI पर आपकी प्यारी रेडियो जॉकी निकिता के साथ।

0: just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only, consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
1: Station sponsor.
2: Seeking a genuine assortment of spices and authentic desi products? If so, a visit to Royal India Groceries is indispensable. Transporting you to the heart of India, it offers an exploration into desi culture. Situated on Marion Road in South Plympton, Royal India Groceries welcomes visitors 7 days a week. For any queries or further information, please reach out on 0883710051.
3: Asian fusion and authentic Indian. With a relaxing seating arrangement for dine-in and takeaway options at our two locations, Mother India Kitchen, Port Road, Alberton 08711-26878 and Cinnamon Curry, Findon Road, Woodville South 08708032001. You can contact for your private or official functions. We are proudly announced that Mother India Kitchen and Cinnamon Curry are the sponsors of this program.
4: Thinking about a home loan, car loan, or refinancing in Adelaide? Mortgage Choice's Jags Lakhani is your local mortgage advisor in South Australia, ready to give you expert support that reflects your needs. Need a first home loan, investment, SMSF, personal or construction loan, or even car and business lending? Jags works with over 35 plus lenders, so you get more choice, more flexibility, more care, and more local support. Whether you're buying, refinancing, or need help finding the right loan, Jags is your trusted partner, guiding you with clarity, honesty, and personal attention every step of the way. Call or email Jags Lakhani today for a free consultation. That's 0451956659 or visit mortgagechoice.com.au/jags.lakhani. Unlock the right way forward.
1: A proud sponsor of 103.1 5 EBI FM.
5: चलिए दोस्तों इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं. बहुत सारे लिसनर्स इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं वेबसाइट के जरिए www.5ebi.com.au पर. और किसी भी कारणवश अगर आपके किसी परिवार ने इस प्रोग्राम को मिस कर दिया है सुनना, तो आप रेडियो ऑन डिमांड पर क्लिक करके हमारे प्रोग्राम को शेयर कर सकते हैं अपने फैमिली के ज़रिए. और इस समय जय शिवचरण, माया, किरण, अनुपमा, सुजाता, राजेश्वरी, हर्षदा और गीतिका इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, हम तक मैसेजेस पहुँचा रहे हैं. इसके लिए आरजे निकिता आपकी खूब खूब आभारी है. दोस्तों, आराधना ने हिंदी सिनेमा का इतिहास बदल दिया. इस फिल्म ने राजेश खन्ना को भारत का पहला सुपरस्टार बनाया और शर्मिला टैगोर को फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड दिलाया. दार्जिलिंग की वो टॉय ट्रेन और राजेश खन्ना की जीप, ये इस गाने को उतना ही ताज़ा करती है. जी हाँ, अगर आप ये गीत सुनते हैं और आँख बंद करते हैं, आपको वो दृश्य हूबहू नज़र आएगा जहाँ पे शर्मिला टैगोर ट्रेन की विंडो सीट पर बैठी है, दार्जिलिंग की वादियाँ हैं और राजेश खन्ना ये गीत गुनगुना रहे हैं अपनी जीप पे बैठ के. शर्मिला जी ने ग्लैमर और एक्टिंग दोनों का ऐसा संगम दिखाया जो बहुत कम हीरोइन कर पाई. चलिए अब बारी है अगले गीत की. दिल से दिल मिले फिल्म चरित्रहीन जो कि 1974 में आई थी, उस मूवी का गीत है. और शर्मिला टैगोर के ऑपोजिट नज़र आए हैं संजीव कुमार. बेहद ही उमदा गीत है. ओनली ऑन 5 EBI आपकी प्यारी रेडियो जॉकी निकिता के साथ.

0: कितना मधुर और दिल को छू लेने वाला गीत। संजीव कुमार और शर्मिला टैगोर दोनों ही अपनी जबरदस्त एक्टिंग के लिए जाने जाते थे। चरित्रहीन एक गंभीर और भावनात्मक फिल्म थी, जिसने शर्मिला जी ने अपनी अभिनय की क्षमता का एक और नया रूप बताया। यही बात उन्हें सिर्फ एक ग्लैमरस स्टार ही नहीं बल्कि एक सीरियस एक्टर भी बनाती है। सिर्फ चेहरा ही खूबसूरत हो जरूरी तो नहीं, किरदार में भी रोशनी होना चाहिए। शर्मिला जी ने हर भूमिका को इस तरीके से जिया जैसे जिंदगी खुद कहानी होनी चाहिए। तेरा मुझसे पहले का नाता कोई फिल्म आ गले लग जा, जो कि 1973 में आई थी, उस मूवी का ये गीत जिसमें शर्मिला के अगेंस्ट नजर आए शशि कपूर। ओनली ऑन 5EBI पर सुनेंगे आपकी प्यारी रेडियो जॉकी निकिता के साथ।
1: नहीं नहीं राहुल, ये गाना मत गाओ।
2: गाने दीजिए ना।
1: गाओ बेटे, यही गाना गाओ। गाओ